हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुगर खां भी डाढा नियर नहीं का चीज न आहे नकी।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
3: ब्रॉट टू यू बाय
4: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान
5: सबब वार्ड जी क्षतिकरण सबब वधिक नुकसान थियो। पिम्स अस्पताल मूजिब ऑक्सीजन पॉइंट सबब बाह की शिदत में इजाफो थियो। बाह दौरान ब डॉक्टर ए नर्सिस रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कयो। सिक्योरिटी अमले भी मदद कई। नर्सरी के पासे वाले कमरे में चार ए टे मारन के बचाया वो। अस्पताल जा समूरा एमरजेंसी जिक्स खुलियल ए फाल होने की दावा। पिम्स अस्पताल में बाह वाक्य सबब बारा किए फोत थे। वजीर आजम की हिदायत साने की जांच लाए आला सतह इंक्वायरी कमेटी कायम। नोटिफिकेशन जारी। रिटायर्ड वफाकी सेक्रेटरी शाहिद खान की सरबराही में जुड़ियल कमेटी में मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर खुर्शीद डॉक्टर बेरिस्टर नबील अहमद एवाणा डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद मेंबर हूंदा। DOR मूजिब कमेटी के बाह सबब वाक्य के टिमलाइन जो तयन करण समेत अस्पताल के अमले ए फायर ब्रिगेड रेस्क्यू 1122 समेत लागापियल इदारन की हंगामी रद्द अमल इमदादी कार्रवाई जो जायजो वठंदी। ताजन जावल बारन की मुंतकली पिम्स में फायर सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर ए हिफाजती जाब्तन ते अमल जो तफसीली जायजो वरतो वेंदो। वाक्य में मुलविस फरतन जो तयन करे जिम्मेवार जो तयन कयो वेंदो। कमेटी मुस्तकबिल में अड़न वाक्य की रोकथाम लाए पिम्स इंतजामिया के निजाम में जरूरी सुधार जो सिफारिशू पेश कंदी। सेहत वाले वजारत के फौरी तौर इंक्वायरी कमेटी के नोटिफाई करण ए मावनत फराहम करण की हिदायत। पिम्स सानेबाद वजीर आजम की सदारत हेठ आला सतह इजलास लागापियल ऑफिसर से सख्त कावड़ जो इजहार। सेहत वाले वफाकी सेक्रेटरी असलम गोरिया के अहदे तां हटाए छो। वाक्य की शफाफ जांच कर जिम्मेवार खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। फोती बारन के वारसन से हमदर्दी ए दुख जो इजहार। शहबाज शरीफ चाहिए तो नुकसान जो अजालो न थो कर सके। कोताही कंदड़न के न छींदी पान के बेहतसाब लाए वजीर आजम आडो पेश कयो आए। ऑक्सीजन सबब बाह जल्दी पकड़ी। सेहत वाले वफाकी वजीर मुस्तफा कमाल चाहिए तो वार्ड में बारन के ऑक्सीजन लगल हुई जै सबब बाह भड़की का भी शह लिकी न सकंदी। सब कुछ सामू इंदो। ममल फोटेज समेत समूरी शायदू महफूज आन जिम्मेवार के न छो वो। मुसलमानन के विरायण वारी साजिश के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से गजी नाकाम बनायो। अमन दुश्मन अंसर मुस्लिम मुल्कन में नफरत पखण में नाकाम रहा। सऊदी ए तुर्किया सदाई सुठी ए खराब। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस के खिताब कंदे कुछ तो नए नस्ल कौम के उम्मीदों जो मरकज आए।

अहलकार बिलावल कुले में गोली लगण सबब जख्मी थियो। अहलकार बंद रस्तो खोलाए रहा हुआ त मथन शरपसंदन हमलो कयो। सत्रों ग्रेड नथो खपे सिंध जे 63 सब रजिस्ट्रार तरक्की वठण का इनकार करे छड्यो। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तरक्की वठण का इनकारी सब रजिस्ट्रार जी तरक्की।

सूरत में फुरमज़ामत कतल थियल इंजीनियर फैसल गुलजार भुट्टो के कतल की जांच लाए अठ रुकनी कमेटी कायम। गफलत लापरवाही के इल्ज़ाम हेठ जानी बुरा चौकी इंचार्ज कामरान वसाण मोतल। डीआईजी सखर नासिर आफ्ताब पठान पारा एसएसपी खेरपुर अमीर सऊद मक्सी की सरबराही में जुड़ियल कमेटी में एसएसपी सखर एएसपी सखर डीएसपी कोटडीजी एसएचओ कोटडीजी इंचार्ज सीआई आईटी इंचार्ज केस में जांच ऑफिसर तौर शामिल। डीआईजी सखर कमेटी के हिदायत कई है तो वाकई की छाप जांच कर सतन डीह अंदर रिपोर्ट जमा कराई वे। वाकई में मुलवस असल जवाबदार गिरफ्तार कर डोह में इस्तेमाल थियल हथियार हथ कयो वे।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6।
2: अक्सर वालदेन ही सवाल कंदा आयन त असन जदे एक दफो बारन के पोलियो जा खतरा प्यारिया आयन त वरी बिहर छो प्यारियो। मुंजो नालो मुफ्ती मोहम्मद अहमद आए। तो इन आसान जवाब यो हि बार भी असा वट अल्लाह ताला जी एक बड़ी नेमत आए। बारन जी सेहत जो ख्याल रखन लाजमी है, जरूरी आए। असा जे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूद आए। ये पोलियो बूस्टर बारन जी कुव्वत मुदाफत जे वधाण में मदद करे थी। 10 साल जी उम्र ताई जितरा भी बार आए उनन के ये बूस्टर जी इजाफी खुराक लगान लाजमी आए।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो, बुदंदा रहो।
4: तालीमुल कुरान, कुरान मजीद के लफ्जी तर्जमा और तफसीर पर मुबनी प्रोग्राम मुकर्रर है डॉक्टर फरहत हाशमी।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर जीएफएम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: It's 9:45 AM. This time check is brought to you by
1: Har Maah Munafa Aamdani Mein Izafa Bank Al Habib Rishta Bharose Ka.
2: Ek mazboot Pakistan ki buniyad hamare sehatmand bacche hain. Polio bachchon mein umar bhar ki mazoori ka sabab ban sakta hai, magar isse bachao mumkin hai. अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
3: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 Network, सिंध की आवाज़।

0: जाया। अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
3: Fakiri Dex Ointment.
4: Tez Aaram, Muasir Hifazat, aur Kable Aitmad Mayar.
3: Har achhe store

मनाए त ऑपरेशन दौरान अवाम की जान ए माल की हिफाजत के यकीनी बनाने जो खास ख्याल रखो वो मुल्क में दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तई ऑपरेशन अजम इस्तेकाम जारी रहो। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल के गायनी वार्ड में बाह वाक़े सबब इंतजामी नाहली गफलत सबब 14 ताजा जावल बारड़ा सड़ी फोत वालदेन दाहूं कूकू कंदा रहा डॉक्टर बो स्टाफ बारड़न के बचाने बदरा जान बचाए भजी वो आईसीयू नर्सरी के दरवाजे दूहे सबब।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6।
2: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों? तो मेरा नाम डॉक्टर आरिफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाहर सेहतमंद दिखता है वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चे की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से रह जाता है तो आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे।
1: अजरक के रंगों से रंगी,
3: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
1: सिंध के दिल से निकली आवाज।
3: जी एफ एम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता देव से नूर मुझो तो
0: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।

0: It's 10:30 AM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए. आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्च ब्यूटी क्रीम.
2: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
3: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज. जीए एफएम की आवाज,
2: जीए एफएम नेटवर्क, सिंध की आवाज.

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता देव से नूर मुझो तो
0: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।
2: It's 10:45 AM. This time check is brought to you by
3: हम इस्लामिक बैंकिंग के फरोग में अपना फाल किरदार मुसलसल अदा करते रहेंगे। अस्करी बैंक
4: अक्सर मान जो सवाल हों असा के सही पोलियो जी वैक्सीन 10 सालन ताई छोती दिनी वने तो जको असा वट जेके बार आन अक्सर कमजोर आन उन में इम्यूनिटी तमाम घट हुंदी आ हाई रिस्क हुंदा आन उन के अलावा असा जी एरिया हाई रिस्क का ओवरऑल पूरो सूबो पूरो पाकिस्तान तंजे करे तमा के वैक्सीन जे लाए उम्र की हद को कें जगह वैक्सीन कें भी उम्र के पोलियो लगी सके तो कें उम्र के वैक्सीन कर सके पर रेशो वधिक 10 साल के घट आ तंजे करे असा जो रिक्वेस्ट आए सभी के बूस्टर डोज लगाए।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ जीएफएम 88 नेटवर्क ते।
5: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना
6: फातिये मेहरान सिंध की एक और पहचान
5: जीएफएम नेटवर्क
6: सिंध की आवाज़।

0: किया है सिंध जी दिल जी मटियारे एफ एम 91.6 जो आवाज
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुगर खां भी डाढा नियर नहीं का चीज में आहे लकी करो लई।

वे जोरड़ी विघे नींगर पोत केतराई बार उरड़ी में मुबतला घोट अकबर गबोल में उरड़ी की बीमारी पखेड़ वही उरड़ी में मुबतला ब सालन जो शाजे वलिद मुनवर गबोल फोत वो केतराई बार बीमारी में वरतल सेहत खाते नोटिस न वरतो गोठाणा परेशानी जो शिकार।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: It's 11:15 a.m.
1: This time check is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: अक्सर वालदैन ही सवाल कंदा आहिनि त असां जॾहिं हिकु दफ़ो ॿारनि खे पोलियो जा ख़तरा प्यारिया आहिनि त वरी ॿीहर छो प्यारियूं। मुंहिंजो नालो मुफ़्ती मुहम्मद अहमद आहे। पंहिंजो आसान जवाबु इहो आहे, ही ॿार बि असां वटि अल्ला ताला जी हिकु वॾी नियामत आहिनि। ॿारनि जी सिहत जो ख़्यालु रखणु लाज़मी ऐं ज़रूरी आहे। असांजे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूदु आहे। ही पोलियो बूस्टर ॿारनि जी क़ुवत मुदाफ़त जे वधाइण में मदद करे थी। 10 साल जी उमिरि ताईं जेतिरा बि ॿार आहिनि उन्हनि खे ही बूस्टर जी इज़ाफ़ी खुराक लॻाइणु लाज़मी आहे।
4: हर दिन हर पहर ज़िंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।
5: और अब्बा हो काहे रित ये बनाई।
4: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अलग ही यहाँ का शाही बाजार है,
1: रंग बिरंगे हैं सक्खर के अंदाज,
0: जिनकी है बस एक ही आवाज,
1: जीए सक्खर FM 88,
0: सक्खर की आवाज, जीए FM 88,
1: सिंध की आवाज।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: It's 11:30 a.m. आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। It's 11:30 AM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए। आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्ने एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो। आर्च ब्यूटी क्रीम।
2: अक्सर मान जो सवाल होता असा सही पोलियो की वैक्सीन 10 साल तीन छो थी डी वे तो असके बार अक्सर कमजोर आन उनमें इम्यूनिटी तमाम घट हूँ हाई रिस्क हूँ उन असाजी एरिया हाई रिस्क है ओवरऑल पूरा सूबो पूरा पाकिस्तान तेज कर वैक्सीन के लिए उम्र की हद को कें जगह वैक्सीन कें भी उम्र के पोलियो लगी।

0: लॻे थो कंहिं उमिरि ते वैक्सीन करे सघे थी, पर रेशियो वधीक 10 सालनि खां घटि आहे। तंहिंजे करे असांजो रिक्वेस्ट आहे त सभिनी खे बूस्टर डोज़ लॻाए।
1: अभी ॿुधो पिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज़।
2: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
1: सिंध जो आवाज़ ॿुधंदा रहो।

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: देखा मिलो, बस तुम ही देखा करो, बस तुम ही देखा करो, तुम ही मेरा नाम
1: कहेंगे।
0: थैंक यू,
1: थैंक यू सो मच, बहुत सारा ख्याल रखें अपना। इस मार्केट शोर अल्लाह हाफिज़।

ओके जी, इस माह के शो का हम गाना प्ले करने जा रहे हैं. और जब मैंने ये ओएसटी सर्च किया है ना, तो मेरे पास तो तीन तरह के ओएसटी आए हैं इसी ड्रामा के. तो अब देखते हैं कि ये एग्जैक्ट वो ही है जो इस माह के शो ने हमें सुनाया था या

0: Ascent Car.
1: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
2: GFM 91.6
3: It's 12 PM. This time check is brought to you by
4: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
5: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है.
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सॉप.
5: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए.
6: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
7: ब्रॉट टू यू बाय
8: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो
9: जी चूंड सुभाणे थींदी. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में मुकर्रर सऊदी सफीर की अलविदाई मुलाकात. वज़ीर आज़म सऊदी सफीर के जिम्मेवारियों बेहतरीन अंदाज में निभाने ते मुबारक दिनी. शहबाज शरीफ चयो तो खिते में अमुन इस्तेकाम के क़याम लाए सऊदी किरदार सारा जोगो है. पाकिस्तान ए सऊदी अरब जा लागापा भी वधीक मजबूत थिया है. सिंध हाई कोर्ट में मंशात केस में गिरफ्तार बिन जणन की जमानत वारी दरख्वास्त से बुधनी. जांच ऑफिसर की पेश न थियण से अदालत पारा कावड़ जो इजहार. थाने के जांच ऑफिसर के हथकड़ियों हड़ी अदालत में पेश करण जो हुकुम. अदालत में पेश थियल अहलकार बुधायो तो जांच ऑफिसर के वठण वयो हुयस घर मौजूद न हो. जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलोड़ो रिमार्क्स डींदे चयो आहे तो जांच ऑफिसर के पेश न कयो वयो तो एएसआई के जेल मोकिलियो वेंदो. वारे मेजरी पाणी जी कोर्ट खिलाफ जे यू आई जे सर ते एहतजाज. फाजल राहू चौक ते कुरान पानी करे एहतजाज जो धरणो.
10: मुकनिहारी को वाइप कर देगा.
9: जो है तो वारे तालके जे शाख में जरी पाणी न पहुतो तसां वारे जे हर शाख ते कुरान शरीफ जा खत्मा पढ़ी हुकुमरानन जे खिलाफ एहतजाज कंदा रहंदासीं. दरबार वेझो उड़ी वगे नींगर फौत केतरा ई बार उड़ी में मुबतला गोठ अकबर गबोल में उड़ी की बीमारी पखिड़ी वही. उड़ी में मुबतला बिन साल शाहजे वलिद मुनवर गबोल फौत केतरा ई बार बीमारी में वरतल. सेहत खाते नोटिस न वरतो गोठाणा परेशानी जो शिकार. बलोचिस्तान के इलाके सोबतपुर वेझो फुर मजामत सब्जी विक्रो कंदड़ पोरेत गोलियों हणी कतल. डेरा मुराद जमारी के इलाके हासिलवाल लग हथियारबंदन न्याज खाणी के जगमाल बणायो. मज़ाहमत करण ते हथियारबंद पोरेत के गोलियों हणी कतल कयो. मोटरसाइकिल रकम खणी फरार थी विया.

पीर जो गोठ में वधंदड़ बदमनी खिलाफ़ शहरन जो रैली ऐं धरणो शहरन पीर गोठ में वधंदड़ बदमनी खिलाफ़ शहरन रैली कढी रासदी गेट वटि धरणो हयो। एहतजाज कंदड़ जो चवणु आहे त पीर गोठ शहर में बदमनी चोट चढ़ी वई आहे। ॾींहुं ॾिठे शहरन खां फुरूं थी रहियूं आहिनि। द्वारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई करे अमन बहाल करायो वञे।

0: नेपाल में बोर्ड लैंडस्लाइडिंग तबाही मचाए छी फोतिन जो अंग वधी 102 थी वयो 260 परेंट समेत 558 शहरी बदस्तूर गुम गोला जारी नेपाल तिब्बत के सरहदी इलाके में बोर्ड लैंडस्लाइडिंग सबब 102 जणा अजल जो शिकार थे नेपाली फौज गुम थियल माण्हुनि जी ॻोल्हा लाइ 2000 खां वधीक अहलकार मुक़रर करे छॾिया
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है सुनते रहो GAFM 91.6
3: अक्सर वालदेन जो यो चवण हुंदो आ त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पियारियूं जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉ

0: रामा अनुलालय लाइ मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं हुन में का बि सुई इस्तेमाल न थींदी बग़ैर कंहिं दर्द जे। वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मुज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि।
1: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज़, ॿुधंदा रहो।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: It's 12:15 PM.
4: This time check is brought to you by
5: D Skin Beauty Cream, असली ग्लो हर निया जोशो, a product by Biocon International Pakistan.
6: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों? तो मैं नाम डॉक्टर आरिफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाजाहिर सेहतमंद दिखता है वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चे की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से रह जाता है तो आप फिर आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे।
0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज़
1: GFM 91.6।

0: पीअण जो साफ़ पाणी फराहम कयो वञे थो। रोज़ानो शाम जो नर्सरी खां अठे क्लास ताईं।
1: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
2: GFM 91.6।
1: अपना शहर अपना घर।

0: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
1: गर्मियों से भी रोकता है, तो मैं यही कहूंगा कि भाई दरख्त लगाना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया इस वक्त।
2: जी जी कंटिन्यू कीजिएगा।
1: मैं इस बात को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू रख रहा हूँ एक चीज पे कि भाई आज का टॉपिक जैसे हमारा कंसर्न है बच्चों के साथ कुशलकारी के बारे में तैलीम देना क्यों जरूरी हो जाती है, तो बच्चों को सिर्फ बताना काफी नहीं होता, दरख्त अहम है बल्कि उन्हें ये अमली तौर पे उसका हिस्सा बनाना होगा। अभी कैसे बनेगा दरख्त के बारे में हम कैसे उन्हें आगाही देंगे, तो इसपे देखें मेन जो अहम किरदार होता है ना वो असातिज़ा किराम का होता है जो स्कूल के अंदर उन्हें गाइड करते हैं। अब बच्चा उसको कैसे सीखेगा, बच्चा जो सीखता है वो एक तो अपने पेरेंट्स से सीखता है जो उनके साथ घर में होते हैं, दूसरा उनके असातिज़ा से सीखता है जो उनके साथ होते हैं। अब मैं ये कहूंगा कि भाई स्कूल्स के अंदर भी हम इस तरह से पौधे लगाएं और उन पौधों को लगाते वक्त उन बच्चों को भी साथ में लेके जाएं ताकि उन्हें हम ये चीजें करवाएं कि भाई ये पौधा हमने लगाया, इसको पानी भी देना है, इसकी देखभाल भी करनी है, और जैसे जैसे वो पौधा बड़ा होता जाता है और बच्चा उसकी देखभाल करता जाता है तो इस तरह से उनके साथ एक ताल्लुकात जो है वो बढ़ जाते हैं, मतलब एक जज्बात जो उनके होते हैं वो ज्यादा अटैच हो जाते हैं और बच्चा फिर दरख्त की साइड पे और पौधों को बढ़ाने में अपना किरदार अदा करता है।
2: बिल्कुल ऐसा ही है जी, और दरख्त वाकई बहुत अहमियत रखते हैं और आज हम इसी बारे में बात कर रहे हैं कि अपने बच्चों को हम आगे चल के इस बारे में किस तरीके से आगाही दे सकते हैं। अच्छा असद बलोच, आप हमें ये भी बताइएगा कि बच्चों को शजरकारी के बारे में तालीम देना क्यों जरूरी है।

देखें नई जो बीमारियां हैं, स्किन के मसाइल हैं, वायरस हैं या सांस की कमी है, इस तरह के ये मसाइल क्यों पैदा हो रहे हैं? क्योंकि जो चीज इन चीजों से रोक रही है उसको हम खत्म कर रहे हैं। इन सब की वजूहत दरख्तों की कमी है। अगर हम दरख्त इस तरह से काटते जाएंगे तो ऐसे समझे कि एक तरफ दरख्त कट रहे हैं तो दूसरी तरफ इस तरह के मसाइल जो है वो बढ़ रहे हैं।

0: वाले से, तो उनको कौन एजुकेट करेगा, मेरा आपसे ये सवाल है. मतलब उन लोगों को हम किस तरीके से शऊर दे सकते हैं जो हमारे बच्चों को आगे चल के शऊर दें, उन टीचर्स को, उन असातिज़ा को, उन पेरेंट्स को जिनको इतनी ज्यादा आगाही अभी तक भी नहीं है आज के दौर में, तो ये हमें बताइएगा प्लीज.
1: जी मैम, ये रियली एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है. अब देखिए, जैसे इस वक्त एचएफटी काम कर रही है, और एचएफटी ये नहीं है कि सिर्फ पौधे दे रही है या फिर इस तरह से काम कर रही है, वो सेशंस भी करवाएं. मतलब एचएफटी जैसे सेशंस करवा रही है, तो जो भी ग्रीनरी के ऊपर काम कर रहे हैं या दरख्तों के ऊपर काम कर रहे हैं, तो सबसे अहम बात यह है कि वो सेशंस रखें, उन पेरेंट्स को, उन असातिज़ा के साथ ऐसे सेशंस रखें, पहले उन्हें आगाही दें कि भाई इस चीज की अहमियत क्या है हमारे मुआशरे के अंदर. और जैसे उनको अवेयरनेस आएगी, तो फिर वही मैसेज हम कन्वे करते हैं उन असातिज़ा और पेरेंट्स के थ्रू उन बच्चों तक. फिर इस तरह से उन बच्चों को भी आगाह किया जाए, भाई ये मैसेज हमारा आप कम से कम 10 बच्चों तक अगर पहुंचाते, तो इस तरह से मेरे ख्याल में ये मैसेज हमारा काफी हद तक कन्वे भी हो सकता है.
0: बिल्कुल ऐसा ही है. अच्छा असद बलोच, टाइम भी बहुत लिमिटेड है, तो आप हमें ये बताइए कि लास्ट में वो बच्चे जिनको हम प्लांटिंग के लिए एजुकेट करना चाहते हैं, वो वालिदैन जो अपने बच्चों को प्लांटिंग के लिए एजुकेट करना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे?
1: जी मैम, बिल्कुल लास्ट में ये पैगाम हम जरूर उनको देना चाहते हैं जो हमें इस वक्त सुन रहे हैं. तो भाई देखिए, एक सिंपल सी पोएट्री है, अफराद की आंखों में है अकवाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा. तो हमें सबको मिलके इस मुआशरे को बेहतर बनाना है, माहौलियाती तहफ़ के लिए अपना किरदार अदा करना है. और मैं तो ये कहूंगा कि भाई आप लोग एक एक पौधा लगाएं, अपने लिए लगाएं, अपने आने वाली नस्ल के लिए लगाएं, और इस तरह की बढ़ती हुई बीमारियों को कम करने के लिए भी लगाएं. और ये सोचे नहीं आप, ये एक बेहतरीन प्रोग्राम चल रहा है, और इस प्रोग्राम के तरह ऐसे समझे कि काफी माशाल्लाह गेस्ट आते हैं और कन्वे करते हैं काफी चीजें. तो मैं यही कहूंगा कि आप आज से स्टार्टिंग करें, और ये सीजन बेहतरीन है, इस वक्त शुजरकारी का भी मौसम है, तो आप आज से एक काउंटिंग रखें कि मुझे कम से कम इतने पौधे लगाने, और वही मैसेज आप सब तक फॉरवर्ड करें. ऐसे नहीं कि सिर्फ आपने अपना किरदार अदा कर लिया तो बात खत्म होगी. भाई किरदार बेशक आप अदा करें, लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कम से कम 10 बंदों तक हमारा ये मैसेज पहुंचाएं कि शुजरकारी करें और सरसब्ज पाकिस्तान बनाएं.
0: ओके जी, थैंक यू सो मच असद बलोच, आप हमारे साथ मौजूद रहे. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस इन द शो. अपना बहुत सारा ख्याल रखिए.
1: ओके,
0: अल्लाह हाफिज जी. और ये था आज का सेगमेंट हरा भरा पाकिस्तान, जिसको सपोर्ट करता है हमेशा की तरह एचएफटी पाकिस्तान, यानी कि हैप्पीनेस फाउंडेशन ट्रस्ट पाकिस्तान. और आज का सेगमेंट यहीं पे खत्म होता है. इंशाल्लाह नेक्स्ट सेगमेंट हमारा होगा अगले वेनेसडे एंड थर्सडेज को. सो इसी के साथ हम चलते हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक की जानिब. आपने कहीं नहीं जाना, मेरा साथ देना है, क्योंकि आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है.
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो.
3: It's 12:30 PM. This time check is brought to you by.
4: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाएं. आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, acne and scars reduce करके skin को बनाए radiant, sparkling और दे शानदार miracle glow. Arch Beauty Cream.
2: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज.
5: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
2: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो.

welcome back once again. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, मुझे कहते हैं आरजे रुखसार, आपको मेरा साथ पूरे पूरे एक बजे तक का. और आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं जी कॉल्स के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू और कमेंट्स के थ्रू, तो जरूर ज्वाइन करें. एंड साथ साथ हमारा सेगमेंट हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज बोलो तो माने. तो आज का जो टंग ट्विस्टर है वो कुछ इस तरीके से है कि लंबे लकड़ी से लटमू, लाल लीमू लकड़ी से, ठीक है. और ये कहेंगे और कॉल्स आप लोगों की लेंगे 0300 11 34 88. इसके साथ साथ आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों के मैसेजेस

0: बोलेंगे नहीं,
1: बोल नहीं सकता। लाल लकड़ी से लेने से लंबी लकड़ी से लाल लेने तक
0: नहीं। आपने तो अपना ही बना लिया, ऐसे थोड़ी है। आपने कहना है कि लंबी लकड़ी से लटके लाल लीमू, लाल लीमू लटके लंबी लकड़ी,
1: लंबी लकड़ी से लटके लाल लीमू।
0: छोड़े छोड़े, आपसे ना हो पाएगा। थैंक यू सो मच। और कुछ कहेंगे?
1: बस अगर कोई सॉन्ग सुना दो, लड़के सुनाई आती है तो।
0: ओके, मैं सॉन्ग सुनाती हूँ। थैंक यू।

साथ साथ हम गाना चेंज करेंगे एंड हम गाना प्ले करेंगे एक और हम प्ले करने जा रहे हैं जी ये वाला सॉन्ग जो कि मैं प्ले कर रही हूँ द वन एंड ओनली बिलासी की आवाज में.

0: सखर की आवाज मोरो की हो तो आवाज भी मोरो की है। FM 88।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6। सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।
2: अक्सर वालदेन सवाल कींदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाबु बिल्कुलु आसान आहे। इहे असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में त 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि, अलाह जे हुकम सां उहे ख़तम थी वेंदा ऐं महफ़ूज़ रहंदो ऐं

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: Okay, जी, welcome back once again. आप सुन रहे हैं सनकी गुलजार है और मुझे कहते हैं आरजे रुखसार
1: स्टूडियो
0: आकर मेरे साथ पूरी पूरी एक बजे तक का. एक बजने में बहुत कम वक्त बाकी रह चुका है और हम चलेंगे आगे.

0: ये मुझे अच्छा लगता है।
1: चले जबरदस्त, बहुत अच्छा। और मुझे बताइएगा शाहिद के लास्ट लकी कॉलर हैं आप, आज की अच्छी बात क्या है?
0: अच्छी बात हमें आजकल के दौर में ना हर बंदा दूसरों को तंग करना चाहता है, मतलब कि हम किसी को कुछ नहीं देख सकते ना कि इसे हमें क्या मिलेगा। अगर हम किसी के लिए आसानी पैदा नहीं कर सकते तो हमें किसी के लिए मुश्किल भी पैदा नहीं करनी चाहिए।
1: वेरी वेल सेड, क्या बात है,
0: थैंक यू।
1: और कुछ कहना चाहेंगे शाहिद?
0: बहुत शुक्रिया, आपकी बात बहुत अच्छी है माशाल्लाह।
1: थैंक यू सो मच। और आपकी ये थे लास्ट।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 1 p.m. This time check is brought to you by
3: Fakiri Dex Ointment.
4: Tez aaram, muasir hifazat aur qabil aitmad mayar.
3: Har acche store se naam lekar talab kijiye.
5: Ab aap sunenge GAFM network par KTN News.
6: Brought to you by
7: Sona Yulia Granular.

0: बारे में ज़रई पाणी जी कोर्ट खिलाफ़ जेयूआई जे सर ते एहतजाज। फाज़िल राव चौक ते कुरान पानी करे एहतजाज जी धरणो हयो वियो। वारे तालके मां पाणी खोट ख़त्म करण जो मुतालबो। अॻवान चयो आहे त वारे तालके जे शाखनि में ज़रई पाणी न पहुतो त असां वारे जे हर शाख ते कुरान शरीफ़ जा ख़त्मा पढ़ी हुकुमराननि ख़िलाफ़ एहतजाज कंदा रहंदासीं। जरवार वेझो उरड़ी वगे नींगर फोत केतिरा ई ॿार उरड़ी में मुबतला। ॻोठु अकबर गबोल में उरड़ी जी बीमारी पखिड़जी वई। उरड़ीअ में मुबतला ॿिनि सालनि जो शाज़े वलिद मुनवर गबोल फोत थी वियो। केतिरा ई ॿार बीमारी में वरितल। सिहत खाते नोटिस न वरितो। ॻोठाणा परेशानियुनि जो शिकार। नसीराबाद में फूड खाते जे नाजाइज़नि ऐं ॾाढाइनि ख़िलाफ़ सिंध बलोचिस्तान राइस मिल्स एसोसिएशन पारां सिंध हुकूमत राइस मिल्स एसोसिएशन जो इंडस्ट्राइ वे ते धरणो। राइस मिल्स काज़ी पेट्रोल पंप वटि टायरनि खे बाहियूं ॾेई रोड ब्लॉक करे धरणो आयो। अॻवाननि चयो आहे त ज़्यादतियूं बंदि न थियूं त एहतजाज जो दायरो वधायो वेंदो। पीर जो ॻोठ में वधंदड़ बदमनी ख़िलाफ़ शहरनि जी रैली ऐं धरणो। शहरनि पीर ॻोठ में वधंदड़ बदमनी ख़िलाफ़ शहरनि रैली कढी राशिदी गेट वटि धरणो आयो। एहतजाज कंदड़नि जो चवणु आहे त पीर ॻोठ शहर में बदमनी चोर चढ़ी वई आहे। ॾींहुं ॾिठे शहरनि खां फुरू थी रहियूं आहिनि। ॾोहारियुनि ख़िलाफ़ कार्रवाई करे अमन बहाल करायो वञे। उॿावड़ो वेझो घर जी भित किरण सबब निंगरी फोत ॿी ज़ख़्मी। ॻोठु मुको ॾहर में घर जी कची भित किरण सबब ज़ैनब दायो फोत थी वई। रशीदा दायो ज़ख़्मी थी पई। घर धणी नुमान दायो जो चवण आहे त घर
1: सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
3: वालदेन ही सवाल कंदा आहिनि त असां जॾहिं हिकु दफ़ो ॿारनि खे पोलियो जा ख़तरा पियारिया आहिनि त वरी ॿीहर छो पियारियूं। मुंहिंजो नालो मुफ़्ती मुहम्मद अहमद आहे। त इन जो आसान जवाबु इहो आहे, हीउ ॿार बि असां वटि अल्ला ताला जी हिकु वॾी नियामत आहिनि। ॿारनि जी सिहत जो ख़्यालु रखणु लाज़मी ऐं ज़रूरी आहे। असांजे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूदु आहे। ही पोलियो बूस्टर ॿारनि जी क़ुवत मुदाफ़त जे वधाइण में मदद करे थी। 10 साल जी उमिरि ताईं जेतिरा बि ॿार आहिनि उन्हनि खे ही बूस्टर इज़ाफ़ी खुराक लॻाइण लाज़मी आहे।
4: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज़, ॿुधंदा रहो।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: उन में इम्यूनिटी तमामु घटि हूंदी आहे, हाई रिस्क हूंदा आहिनि। उन खां अलावा असांजी एरिया हाई रिस्क आहे, ओवरऑल पूरो सूबो, पूरो पाकिस्तान। तंहिंजे करे तव्हांखे वैक्सीन जे लाइ उमिरि जी हदि कोन्हे, कंहिं बि जॻह ते वैक्सीन, कंहिं बि उमिरि ते पोलियो लॻी सघे थो, कंहिं उमिरि ते वैक्सीन करे सघे थी, पर रेशियो वधीक 10 सालनि खां घटि आहे। तंहिंजे करे असांजो रिक्वेस्ट आहे सभिनी खे बूस्टर डोज़ लॻाए।
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो।
1: It's 1:30 PM. This time check is brought to you by.
2: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाएं। आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो। आर्च ब्यूटी क्रीम।
3: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
4: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अक्सर वालदेन जो यो चवण हों असा बार बार पंजे बारन के पोलियो का कतरा छो प्यारियों जो असा बार पेर पोलियो का कतरा पी चुको है। मुझो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह लैल है। मां बारन जे शोबे में खिदमत अंजाम दिया तो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीण से बार की इम्यूनिटी जो बेहतर थे थी। हाँ जो कैंपेन अचे थी जैमें असा जो पोलियो जो डींदी उनमें का भी सुई इस्तेमाल न थी बगैर कें दर्द के वैक्सीन जे बार के करा तो जी असो पाकिस्तान इन पोलियो जड़े मुजी मर्ज में जो महफूज रह।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: के बच्चे 10 जने अभी गायब हुए हूँ। किसी वाले अंदर उन्होंने
1: डॉक्टर ने कहा कि डब्बे में बच्चे लेके गए और उस SHO नदीम ने बोला है हम में से किसी ने बच्चे के टुकड़े भी नहीं देखे। हम लोग किसी बात पे यकीन नहीं करते।
0: हमने जो भी है हमें दो देखी है ना बच्चों के टुकड़े देखे।
2: वफाकी राजधानी इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में बाहि लगने वाले वाक़े जो जिम्मेवार केर वफाकी हुकूमत में डी बी 14 मासूम बारन के सड़ी फोत थे वाक़े की जांच मुकम्मिल न कर सकी। कार्रवाई भी रुगो वफाकी सेक्रेटरी तई महदूद पिम्स जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर समेत बया अमलदार बदसूर उहदन से मौजूद सड़ी फोत थे मासूम बारन जा वारिस इंसाफ जा मुंतजिर साने की अदालत जांच लाए इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दाखिल दरख्वास्त। कौमी असेंबली के सेहत बाबत कमेटी पिम्स में सीमा बाहि लगने वारन बयानन के शकी करार दई छो। पिम्स अमले के बयानन में तजाद की दावा स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स पारा पिम्स जो दौरो बाहि वाक़े जा तफसील मालूम कया। कमेटी चेयरमैन डॉक्टर महेश कुमार अमले के बयानन में तजाद है। आलिया कामरान अमले के बयानन में लगी रो है खेन रटो हणायो वो है। डॉक्टर शाजिया सोबे अमले जा बयान मुतजाद लगे तो ड्यूटी से मौजूद न हुआ। पंजाब जो डहाड़ तकरारी सीजी टीपी लिंक कैनाल के खोले छड़ा बिन्हीं तकरारी कैनाल जरिए 18,000 क्यूसिक पानी खर्च शुरू कर छो। पानी खोट के मुंह डींदड़ सिंध में सूरतहाल संगीन थण जो खदशो जरियन मौजूद पंजाब पारा मुबैना तौर जबरदस्ती खोल सीजी लिंक कैनाल में 13,000 क्यूसिक पानी छड़ो वो है जडे त टीपी लिंक कैनाल में 5,000 क्यूसिक पानी छोड़ कर वो है। सिंध में पानी खोट दौरान पंजाब पारा जबरदस्ती खोल कैनाल से आबादगार जहां खदशा वी वा। इरसा में सिंध की नुमाइंदगी की खामोशी से भी सवाल बरकरार जरियन चवण है इरसा में सिंध जो नुमाइंदो वे अरसे ऑफिसी न अची रो है। सिक्योरिटी फोर्सिस जो केपी के बलोचिस्तान में दहशतगर्द खिलाफ कार्रवाई 11 दहशतगर्द मार सिक्योरिटी जरिए मौजूद केपी के इलाके बनून लाडा में 7 दहशतगर्द के जन्म भेड़ो कर वो। बलोचिस्तान के इलाके खुजदार में ऑपरेशन दौरान 4 दहशतगर्द मार दहशतगर्दन जो एक थाक में तबाह बारूदी मवाद हथ वजीर आजम शहबाज शरीफ पारा कामयाब ऑपरेशन से फोर्सिस के भेटा पेश। शहबाज शरीफ चवा तो दहशतगर्दी खिलाफ जंग में कौम फोर्सिस से गड बीठल है। नवाज लीग पारा इफ्तखार गिलानी के आजाद कश्मीर जो वजीर आजम बनाने जो फैसलो वजीर आजम हाउस में मुशावरत बाद इफ्तखार गिलानी के वजीर आजम बनाने जो फैसलो किया वो। बैरिस्टर इफ्तखार गिलानी टेक्नोक्रेट सीट से चूंडो वो। आजाद कश्मीर के नए वजीर आजम की चूंड सुभाने थी वी। नौशेरो फिरोजी अदालत में जालंजार के घर से हमले समेत 8 केसन की बुधनी NPP सरबराह गुलाम मुर्तजा जतोई मसरूर जतोई बया अदालत में पेश। अदालत समूरन केसन की बुधनियों 24 सितंबर तई मुलतवी कर छ्यू। मुर्तजा जतोई केस पूरा इंसाफ की उम्मीद है।

0: मीरपुर माथेलो भरसा ॻोठाणे ज़ाल खे क़तल करण बाद पाण खे गोली हणी आपघात करे छॾियो। ॻोठ मीर खान वसीम अब्दुल जब्बार पंहिंजी घरवारीअ खे गोली हणी क़तल कयो। ज़ाल खे क़तल करण बाद जवाबदार अब्दुल जब्बार पाण खे बि गोली हणी आपघात कयो। वारे में ज़रई पाणीअ जी खोड़ ख़िलाफ़ JUI जे सर ते एहतजाज। फाज़िल राउ चौक ते क़ुरान ख़्वानी करे एहतजाजी धरणो हयो वियो। वारे तालके मां पाणी खोट ख़तम करण जो मुतालबो। अॻवाणनि चयो आहे त वारे तालके जे शाखनि में ज़रई पाणी न पहुतो त असां वारे जी हर शाख ते क़ुरान शरीफ़ जा ख़तमा पढ़ी हुकुमराननि जे ख़िलाफ़ एहतजाज कंदा रहंदासीं। जरवार वेझो उड़ी वॻे निंगरी फोत केतिरा ई ॿार उड़ी में मुबतला। ॻोठ अकबर गबोल में उड़ीअ जी बीमारी पखिड़िजी वई। उड़ीअ में मुबतला 2 सालनि जो शाज़े वलिद मुनवर गबोल फोत थी वियो। केतिरा ई ॿार बीमारी में वरितल। सिहत खाते नोटिस न वरितो। ॻोठाणा परेशानियुनि जो शिकार। नसीराबाद में फुट खाते जे नाजाइज़नि ऐं ॾाढाइनि ख़िलाफ़ सिंध बलोचिस्तान राइस मिल्स एसोसिएशन पारां सिंध बलोचिस्तान राइस मिल्स एसोसिएशन जो इंडस हाईवे ते धरणो। राइस मिल्स काज़ी पेट्रोल पंप वटि टायरनि खे बाहियूं ॾेई रोड ब्लॉक करे धरणो हयो वियो। अॻवाणनि चयो आहे त ज़्यादतियूं बंदि न थियूं त एहतजाज जो दायरो वधायो वेंदो। पीर जो ॻोठ में वधंदड़ बदमिनियुनि ख़िलाफ़ शहरनि जी रैली ऐं धरणो। शहरनि पीर ॻोठ में वधंदड़ बदमिनियुनि ख़िलाफ़ शहरनि रैली कढी राशिदी गेट वटि धरणो हयो। एहतजाज कंदड़नि जो चवण आहे त पीर ॻोठ शहर में बदमिनी चोट चढ़ी वई आहे। ॾींहुं ॾिठे शहरनि खां फुरूं थी रहियूं आहिनि। लोहारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई करे अमुन बहाल करायो वञे। उॿावड़ो वेझो घर जी भित किरण सबबि निंगरी फोत। ॿी ज़ख़्मी ॻोठ मुकोडहर में घर जी कची भित किरण सबबि ज़ैनब दायो फोत थी वई। रशीदा दायो ज़ख़्मी थी पई। घर धणी नोमान दायो जो चवण आहे त घर जी कची भित भरिसां निंगरियूं रांदि खेॾी रहियूं हुयूं त भित किरी पई। पिथोरो शहर में पाणी पहुचाइण लाइ मिठड़ाओ केनाल में लॻंदड़ पाइप लाइन ख़िलाफ़ हज़ारें पोछड़े जे आबादगारनि जो धरणो। टेल आबादगारनि एसोसिएशन जे सॾु ते आबादगारनि ऐं रहिवासियुनि एहतजाजी मुज़ाहिरो करे धरणो हयो। आबादगारनि जो चवण आहे त मिठड़ाओ केनाल में लॻंदड़ पाइप लाइन इलाइक़े वासियुनि लाइ क़ातिल आहे। नौशहरो फेरोज़ में मुख़्तलिफ़ ॻोठनि जे रहिवासियुनि जो बुनियादी सहूलतनि जी खोट ख़िलाफ़ एहतजाज। ॻोठ ज़िले वारा चांडिया लिंक रोड जी मरमत न थियण ख़िलाफ़ 25 ॻोठनि जे रहिवासियुनि एहतजाज कयो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
3: अक्सर माण्हुनि जो सवाल हूंदो असांखे, साईं पोलियो जी वैक्सीन 10 सालनि ताईं छो थी ॾिनी वञे? त जेको आहे असां वटि जेके ॿार आहिनि अक्सर कमज़ोर आहिनि, उन में इम्यूनिटी तमामु घटि हूंदी आहे, हाई रिस्क हूंदा आहिनि। उन खां अलावा असांजी एरिया हाई रिस्क आहे, ओवरऑल पूरो सूबो, पूरो पाकिस्तान। तंहिंजे करे तव्हांखे वैक्सीन जे लाइ उमिरि जी हद कोन्हे। कंहिं बि जॻह ते वैक्सीन, कंहिं बि उमिरि ते पोलियो लॻी सघे थो, कंहिं उमिरि ते वैक्सीन करे सघे थो, पर रेशियो वधीक 10 सालनि खां घटि आहे। तंहिंजे करे असांजो रिक्वेस्ट आहे त सभिनी खे बूस्टर डोज़ लॻाए।
4: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, ॿुधंदा रहो।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: It's 2:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: अक्सर वालदेन सवाल कींदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाबु बिल्कुलु आसान आहे। इहे असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में त 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि अलाह जे हुकम सां उहे ख़तम थी वेंदा ऐं उहे बचो हमेशा जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूर जो सबबु न बणंदो।
4: अजरक के रंगों से रंगी,
5: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
4: सिंध के दिल से निकली आवाज,
5: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो, उधरदा रहो।
1: It's 2:30 PM. This time check is brought to you by.
2: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाएं। आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो। आर्च ब्यूटी क्रीम।
3: अक्सर वालदेन ही सवाल कंदा आयन त असन जदे एक दफो बारन के पोलियो जा खतरा प्यारिया आयन त वरी बिहर छो प्यारियो। मुंजो नालो मुफ्ती मोहम्मद अहमद आए। तेंदो आसान जवाब यो आ ही बार भी असा वट अल्लाह ताला जी एक बड़ी नियामत आए। बारन जी सेहत जो ख्याल रखन लाजमी है, जरूरी आए। असा जे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूद आए। ही पोलियो बूस्टर बारन जी कुव्वत मुदाफत जे वधाण में मदद करे थी। 10 साल जी उम्र ताई जितरा भी बार आए उनन के ही बूस्टर जी इजाफी खुराक लगान लाजमी आए।
4: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो जीए एफएम 91.6।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

0: अक्सर माण्हुनि जो सवाल हूंदो आहे असांखे, साईं पोलियो जी वैक्सीन 10 सालनि ताईं छो थी ॾिनी वञे? त जेको आहे सो असां वटि जेके ॿार आहिनि अक्सर कमज़ोर आहिनि, उन में इम्यूनिटी तमामु घटि हूंदी आहे, हाई रिस्क हूंदा आहिनि। उन खां अलावा असांजी एरिया हाई रिस्क आहे, ओवरऑल पूरो सूबो, पूरो पाकिस्तान। तंहिंजे करे तव्हांखे वैक्सीन जे लाइ उमिरि जी हदि कोन्हे, कंहिं बि जॻह ते वैक्सीन कंहिं बि उमिरि ते पोलियो लॻी सघे थो, कंहिं उमिरि ते वैक्सीन करे सघे थो, पर रेशियो वधीक 10 सालनि खां घटि आहे। तंहिंजे करे असांजो रिक्वेस्ट आहे त सभिनी खे बूस्टर डोज़ लॻाए।
1: ज़िंदगी गुज़ारियो एतमाद सां, क़ुरान खे समझी ॿुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल क़ुरान रोज़ानो सुबुह 9:05 ते सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज़।
2: GAFM नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज़।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: brought to you by
1: Sona Urea Granular Mittiye jo
2: दौरो चित्तौड़ में घटाई वाले पाकिस्तानी क्वेश्चन जो हिस्सो हो पाकिस्तान रियासती सतह के अफगानिस्तान से गाल तैयार है अफगानिस्तान के रोकनो पव कतरी वजीर आजम ईरान के अहम दौरे से तेहरान पहुंचो शेख मोहम्मद बिन सानी ईरानी सियासी ए अस्करी क्यादत से मुलाकातू कद अमेरिका ईरान विच में जारी चिकनाण के खात्मे समेत खिते की सूरत हाल से गालू क्यों वेंदू आबनार मुझे बहाली वो मामलो भी गौर हेठ

0: तुम्हें क्या पता कि बच्चे 10 जने अभी गायब हुए हैं।
1: डॉबे में बच्चे लेके गए और उस एसएचओ नदीम ने बोला हमने टुकड़े भी नहीं देखे। हम लोग किसी बात पे यकीन नहीं करते। हमने

जनाज़े नमाज़ बाद तदफ़ीन। जनाज़े नमाज़ में पाकिस्तान रेंजर जे आफ़िसरनि जवाननि ऐं शहरनि जी वॾे अंग में शिरकत कई वई। आज़ाद कश्मीर में रोड क्लीयरेंस ऑपरेशन दौरान बबरुल वासी रेंजर सहलकार शाहनवाज़ अली नाइज खे हथियारबंदनि शहीद कयो हो।

0: नसीराबाद में फूड खाते के नाजायजिन ॾाढ़िन खिलाफ सिंध बलूचिस्तान राइज मिल्स एसोसिएशन पारा सिंध बलूचिस्तान राइज मिल्स एसोसिएशन जो इंडस हाईवे ते धरणो। राइज मिल्स काज़ी पेट्रोल पंप वट टायरन के बाहियूं ॾेई रोड ब्लॉक करे धरणो आयो वियो। अॻवाणनि चयो जबार पंहिंजी घरवारी राबिया खे पीएचआई में ज़िम थियण बाद बचियल दवाऊं विकिरो कयूं वेनि।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
4: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज़ ॿुधंदा रहो।

0: किया है सिंध जी दिल पॉइंट सिक्स जो आवाज
1: ओ मुझा मस्त मल कहीं मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज़।

0: 3:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: अक्सर वालदेन जो इहो चवणु हूंदो आहे त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह लयल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं हुन में का बि सुई इस्तेमालु न थींदी बग़ैर कंहिं दर्द जे। वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मुज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि।
4: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: ये है बन के मोहब्बत का साज, जीए एफएम की आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: अक्सर वालदेन सवाल कींदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाबु बिल्कुलु आसान आहे। इहे असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में त 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि अलाह जे हुकम सां उहे ख़तमु थी वेंदा ऐं उहे बचो हमेशह जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूर इहो सबबु न बणंदो।
1: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
2: brought to you by
3: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
4: चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर visited Tehran on 24th August as part of Pakistan's continuing diplomatic efforts to facilitate an end to the US-Iran conflict and renewed efforts for reopening the Strait of Hormuz. Claims by certain quarters that the Chief of Army Staff and the Chief of Defense Forces visited Iran as envoy of President Trump or the US are misleading and factually incorrect, as his visit was undertaken purely in the context and backdrop of Pakistan's ongoing role as a mediator.
5: फील्ड मार्शल जो ईरानी दौरो अमुन लाइ जारी सालसे वारनि कोशिशुनि जो हिसो हो। दौरे खे अमेरिका सां ॻंढण वारियूं ख़बरूं बे बुनियाद आहिनि। पाकिस्तान ऐं ईरान जो वापार जारी आहे। हिक तरफ़ी पाबंदियुनि जे अमल जा पाबंद नाहियूं। पर तर्जुमान ताहिर हुसैन इंद्रावी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जे सदर ट्रंप जे नुमाइंदे तौर तेहरान जो दौरो करण वारे ख़बरुनि खे रद्द कंदे चयो आहे त फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ऐं घरू वज़ीर मोहसिन नकवी जो ईरानी दौरो चित्ताण में घटताई वारे पाकिस्तानी कोशिशुनि जो हिसो हो। पाकिस्तान रियासती सतह ते अफ़गानिस्तान सां ॻाल्हियुनि करण लाइ तयार आहे। अफ़गानिस्तान खे पंहिंजी सरज़मीन पाकिस्तान ख़िलाफ़ इस्तेमाल थियण खे रोकणो पवंदो। कतरी वज़ीर-ए-आज़म ईरान जे अहम दौरे ते अॼु तेहरान पहुचंदो। शेख मोहम्मद बिन सानी ईरानी सियासी ऐं अस्करी क़यादत सां मुलाकातूं कंदो। अमेरिका ईरान विच में जारी छिकताण जे ख़ात्मे समेत खिते जी सूरतयाल ते ॻाल्हियूं कयूं वेंदियूं। आबनार मुज़ी बहाली वारो मामिलो बि ग़ौर हेठि ईंदो।

0: मैं क्या पता कि बच्चे दस जने अभी गायब हुए हूँ, इसलिए बच्चों
1: ने डॉक्टर ने कहा कि डब्बे में बच्चे लेके गए, और उस एसएचओ नदीम ने बोला है हम में से किसी ने बच्चे के टुकड़े भी नहीं देखे। हम लोग किसी बात पे यकीन नहीं करते,
0: हमने
1: जो भी है हमें दो,
0: देखी है ना बच्चों के टुकड़े देखे।
2: वफाकी राजधानी इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में बाहि लगण वाले वाक़े जो जिम्मेवार केर वफाकी हुकूमत बे डी भी 14 मासूम बारन जे सड़ी फोत थियण वाले वाक़े की जांच मुकम्मल न करे सघी। कार्रवाई भी रुगो वफाकी सेक्रेटरी ताई महदूद, पिम्स जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर समेत बया अमलदार बदस्तूर उहदन ते मौजूद। सड़ी फोत थियल मासूम बारन जा वारिस इंसाफ जा मुंतज़िर। साने जी अदालती जांच लाइ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दाखिल दरख्वास्त। कौमी असेंबली जे सेहत बाबत कमेटी पिम्स में एसी मां बाहि लगण वारे बयानन के शकी करार ॾेई छॾियो। पिम्स अमले जे बयानन में बि तसाद जी दावा। स्टैंडिंग कमेटी जे मेंबर्स पारां पिम्स जो दौरो बाहि वाक़े जा तफ़सील मालूम कया। कमेटी चेयरमैन डॉक्टर महेश कुमार चयो आहे त अमले जे बयानन में तज़ाद आहे। आलिया कामरान चयो आहे त अमले जे बयानन मां लॻी रहियो आहे त खेन रटो हणायो वियो आहे। डॉक्टर शाज़िया चयो आहे त अमले जा बयान मुतज़ाद आहिनि, लॻे थो त ड्यूटी ते मौजूद न हुआ।

पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में पेश आयल वाकियो इंतही दिल दुखाईंदड़ आहे। मुल्क में अस्पतालनि जूं हालतूं बहितर करण जी ज़रूरत आहे। असांजी ज़िमेवार सिंध जी हद ताईं आहे। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह चयो आहे त एनिमल हेल्थ कोरंगी जे दौरे दौरान मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल। मुराद अली शाह चयो आहे त सिंध असेंबली में 6 भेरा सूबे जे विरहाङे ख़िलाफ़ ठहराउ पास कयो आहे, जंहिंखे शौक़ु आहे ॿीहर ठहराउ आणे। सिंध जा माण्हू छा था चाहिनि? सिंध जो आवाम जेको चाहींदो उहो ई थींदो। मुंहिंजी या अवां जी ख़्वाहिशनि सां कुझु बि न थींदो। मकानी निज़ाम ऐं इदारनि खे बाख़्तियार बणाइण पीपल्स पार्टी जो मंशूर आहे। सिंध वाहिद सूबो आहे जिते मकानी हुकूमतूं मौजूद आहिनि। सिक्योरिटी फोर्सेज जो के पी के बलोचिस्तान में दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ कार्रवायूं, 11 दहशतगर्द मारिजी विया। पारां कामयाब ऑपरेशन से फोर्सेज खे भेटा पेश। शहबाज शरीफ चयो आहे त दहशतगर्दी ख़िलाफ़ जंग में क़ौम फोर्सेज सां गॾु बीठल आहे। नवाज लीग पारां इफ़्तिखार गिलानी खे आज़ाद कश्मीर जो वज़ीर आज़म बणाइण जो फ़ैसिलो। वज़ीर आज़म हाउस में मुशावरत बाद इफ़्तिखार गिलानी खे वज़ीर आज़म बणाइण जो फ़ैसिलो कयो वियो। बैरिस्टर इफ़्तिखार गिलानी टेक्नोक्रेट सीट ते चूंडियो वियो आहे। आज़ाद कश्मीर जे नए वज़ीर आज़म जी चूंड सुभाणे थींदी। ज़ाल खे क़तल करण बाद पाण खे गोली हणी आपघात करे छॾियो। ॻोठु मीर खान अब्दुल जब्बार पंहिंजी घरवारी राबिया खे गोली हणी क़तल कयो। क़तल बाद फ़रार थी वियो। पाण खे गोली हणी आपघात करे छॾियो। वारे में ज़री पाणी जी खोट ख़िलाफ़ जेयूआई जे एहतजाज। फाज़ल राउ चौक ते क़ुरान ख़्वानी करे एहतजाज जी धरणो हयो वियो। वारे तालके मां पाणी खोट ख़तम करण जो मुतालबो। अॻवाननि चयो आहे त वारे तालके जे शाखर में ज़री पाणी न पहुतो त असां वारे जी हर शाख ते क़ुरान शरीफ़

0: हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
1: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
2: तहजीब और सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
3: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, GAFM की आवाज।
2: GAFM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
2: तहजीब और सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
3: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, GAFM की आवाज।
2: GAFM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: की फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज। जीए एफएम की आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: जानती नहीं हो जुबीन, तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। तुम जब साथ होती हो ना तो दिल करता है कि हर वक्त बस फूलों की बारिश होती रहे। हमेशा के लिए तुम्हें इस मोहब्बत के रिश्ते में कैद करना चाहता हूँ।
1: लेकिन मैं तुमसे नफरत करती हूँ।

0: सेंट्रल से जुमे की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: तहजीब और सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, जीए एफएम की आवाज।
1: जीए एफएम नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: देखिए सवाले इश्क, सुनहरी तितलियाँ और अपने फेवरेट टर्किश ड्रामास ड्रामा सेंट्रल के यूट्यूब चैनल पे।
1: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज। जीए FM की आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: देखिए ड्रामा सीरियल एक मोहब्बत और पीर और मंगल रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: तहजीब और सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, जीए एफएम की आवाज।
1: जीए एफएम नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में पेश आयल वाकियो इंतहाई दिल दुखाईंदड़ है। मुल्क में अस्पतालन जो हालतू बेहतर करण की जरूरत है। असांजी जिम्मेवार सिंध की हद ताई है। वरी वजीर मुराद अली शाह चयो आहे त एनिमल हेल्थ कोरंगी जे दौरे दौरान मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल। मुराद अली शाह चयो आहे त सिंध असेंबली में 6 भेरा सूबे जे विरहांगे ख़िलाफ़ ठहराउ पास कयो आहे, जंहिंखे शौक़ आहे ॿीहर ठहराउ आणे। सिंध जा माण्हू छा था चाहिनि? सिंध जो आवाम जेको चाहींदो उहो ई थींदो। मुंहिंजी या अवां जी ख़्वाहिशनि सां कुझु बि न थींदो। मकानी निज़ाम ऐं इदारनि खे बाख़्तियार बणाइण पीपल्स पार्टी जो मंशूर आहे। सिंध वाहिद सूबो आहे जिते मकानी हुकूमतूं मौजूद आहिनि। सिक्योरिटी फोर्सेज जो केपीके ऐं बलूचिस्तान में दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ कार्रवायूं। 11 दहशतगर्द मारिजी विया। सिक्योरिटी ज़रियुनि मूजिब केपीके जे इलाइक़े बनून ऐं लाडा में 7 दहशतगर्दनि खे जहन भेड़ो कयो वियो। बलूचिस्तान जे इलाइक़े खुज़दार में ऑपरेशन दौरान 4 दहशतगर्द मारिजी विया। दहशतगर्दनि जो हिकु थाक बि तबाह। बारूदी मवाद हथु। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ पारां कामयाब ऑपरेशन ते फोर्सेज खे भेटा पेश। शहबाज़ शरीफ़ चयो आहे त दहशतगर्दी ख़िलाफ़ जंग में क़ौम फोर्सेज सां गॾु बीठल आहे। नवाज़ लीग पारां इफ्तखार गिलानी खे आज़ाद कश्मीर जो वज़ीर आज़म बणाइण जो फ़ैसिलो। वज़ीर आज़म हाउस में मुशावरत बाद इफ्तखार गिलानी खे वज़ीर आज़म बणाइण जो फ़ैसिलो कयो वियो। बैरिस्टर इफ्तखार गिलानी टेक्नोक्रेट सीट ते चूंडियो वियो आहे। आज़ाद कश्मीर जे नए वज़ीर आज़म जी चूंड सुभाणे थींदी।

मीरपुर माथेलो भरसां ॻोठाणे ज़ाल खे क़तल करण बाद पाण खे गोली हणी आपघात करे छॾियो। ॻोठ मीर ख़ान अब्दुल जबार पंहिंजी घरवारी राबिया खे गोली हणी क़तल कयो। क़तल बाद फरार थी वियो। पाण खे गोली हणी आपघात करे छॾियो। वारे में ज़री पाणी जी खोट ख़िलाफ़ JUI जे सर ते एहतजाज। फाज़ल राउ चौक ते क़ुरान ख़्वानी करे एहतजाजी धरणो हयो वियो। वारे तालके मां पाणी खोट ख़तम करण जो मुतालबो। अॻवाननि चयो आहे त वारे तालके जे शाखर में ज़री पाणी न पहुतो त असां

0: दस्तक देखिए हर जुमा और हफ्ता रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।
1: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का सास, GAFM की आवाज।
1: GAFM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों। तो मेरा नाम डॉक्टर आरिफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाहर सेहतमंद दिखता है वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चे की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से रह जाता है तो आप फिर आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे।
1: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, जीए FM की आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियाई FM 91.6, सिंध जो आवाज, बदलता रहो।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल छुप छुप के फर्स्ट रमजान से रोजाना रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस पर।
1: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची पसी है बन के मोहब्बत का साज, जीए एफएम की आवाज।
1: जीए एफएम नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दारा हो।

0: देखिए नई ड्रामा सीरियल हम राही 27 मार्च से जुम्मे और हफ्ते की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: तहजीब और सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, जीए एफएम की आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो, बुदंदा रहो।
1: तहजीब और सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, जीए FM की आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: غلام کیے باشم
1: جانے دل جانے اتنے جانے دل جانے اتنے جانے دل جانے

0: सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी 12 जनवरी से सिर्फ प्री एंटरटेनमेंट पर।
1: तहजीब और सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, जीए एफएम की आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उदंदा रहो।
1: तहजीब और सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, जीए एफएम की आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: अक्सर वालदेन सवाल कींदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाबु बिल्कुलु आसान आहे। इहे असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में त 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि, अलाह जे हुकम सां उहे ख़तम थी वेंदा ऐं उहे बचो हमेशा जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूरी जो सबबु न बणंदो।
5: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज,
6: ब्रॉट टू यू बाय
7: सोना यूरिया ग्रेनुलर, मिट्टी जो मान वधाए।
8: पाकिस्तान खिलाफ़ इस्तेमाल थियण खे रोकणो पवंदो।

0: आप जाने अभी गायब हुए हो। किसी वजन पर उन्होंने बच्चे
1: डॉक्टर ने कहा कि डब्बे में बच्चे लेके गए और उस SHO नदीम ने बोला है हम में से किसी ने बच्चे के टुकड़े भी नहीं देखे। हम लोग किसी बात पे यकीन नहीं करते।
0: हमने जो भी है हमें दो नहीं देखी है ना बच्चों के टुकड़े देखे।
2: वफाकी राजधानी इस्लामाबाद जे पीएमसी अस्पताल में बाहि लगण वारे वाक़े जो जिम्मेवार केर। वफाकी हुकूमत वेडी बि चोड़ा मासूम बारनि जे सड़ी फोत थियण वारे वाक़े जा जिम्मेवार ज़ाहिर न कया। साने जी जांच लाइ चूंडियल कमेटी जांच शुरू करे छॾी। अमले खां लिखत में बयान तलब। CCTV फोटेज बि तहवील में वठी छॾी। कानून वारे वज़ीर सेनेटर आज़म नसीर तरड़ चयो आहे त ज़िंदगीअ जी का बि क़ीमत नाहे। साने जी जांच बाद ज़िमेवारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई थींदी। सुभाणे ताईं शुरूआती रिपोर्ट अची वेंदी। क़ौमी असेंबली जी सिहत बाबति कमेटी पिम्स में AC मां बाहि लॻण वारनि बयाननि खे शकी करार ॾेई छॾियो। पिम्स अमले जे बयाननि में बि तज़ाद जी दावा। स्टैंडिंग कमेटी जे मेंबर पारां पिम्स जो दौरो। बाहि वाक़े जा तफ़सील मालूम कया। कमेटी चेयरमैन डॉक्टर महेश कुमार मलाणी चयो त अमले जे बयाननि में तज़ाद आहे। आलिया कामरान चयो त अमले जे बयाननि मां लॻी रहियो आहे त खेन रटो हणायो वियो आहे। डॉक्टर शाज़िया सोबिया चयो त अमले जा बयान मुतज़ाद आहिनि। लॻे थो ड्यूटी ते मौजूद न हुआ।

एम्स अस्पताल इस्लामाबाद में पेश आयल वाक्य अंटाई दिल धड़ेदड़ आहे। मुल्क में अस्पतालन जो हालत बेहतर करण की जरूरत है। असां जी जिम्मेवारी सिंध की हद ताई आहे। वडे वजीर मुराद अली शाह जी इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ कोरंगी के दौरे दौरान मीडिया से गाल बोल मुराद अली शाह चयो तो सिंध असेंबली छपेरा सूबे के विरागे खिलाफ ठहराव पास कयो आहे जैके शोक आहे बीहर ठहराव आणे। सिंध जा माण्हू छा था चाहिन? सिंध जो अवाम जेको चाहिंदो उहे थींदो। मुझे अवां जी ख्वाहिश सां कुछ न थींदो। मकानी निज़ाम ऐं इदारनि खे बाख़्तियार बणाइण पीपल्स पार्टी जो मंशूर आहे। सिंध वाहिद सूबो आहे जिते मकानी हुकूमतूं मौजूदु आहिनि।

0: पार्टी में
1: हर शूट के साथ होगी बच्चा पार्टी। अपना एम्प्टी शू पैक अप 4 लेकर नियरेस्ट बच्चा पार्टी आउटलेट पर जाओ और बैक टू स्कूल शॉपिंग पर 15% ऑफ एंजॉय करो। शू के साथ साथ बच्चा पार्टी
2: कमीशन की कार्रवाई जो सुभाणे पहिरियों ॾींहुं हूंदो। कमीशन टर्म्स एंड कंडीशन्स तहत जांच ऐं कार्रवाई 30 ॾींहनि अंदर मुकमल कंदी। मीरपुर माथेरो भरिसां ॻोठाणे ज़ाल खे क़तल करण बाद पाण बि गोली हणी आपघात करे छॾियो। ॻोठ मीर ख़ान वसेर में अब्दुल जबार वसेर पंहिंजी घरवारी राबिया खे गोली हणी क़तल कयो। ज़ाल खे क़तल करण बाद जवाबदार अब्दुल जबार वसेर पाण खे बि गोली हणी आपघात कयो। केवर में सरकारी दवाऊं सरकारी अस्पतालनि खे ई विकिरो करण जो इंकशाफ़। के टी न्यूज़ खे कार्ड हथ करे वरितो। केवर ऐं उडेरो लाल जूं अस्पतालूं PPHI में जम थियण बाद बचियल दवाऊं विकिरो कयूं वयूं। मेन स्टोर मां दवाऊं जारी करण बाबति रिपोर्ट के टी न्यूज़ हासिल करे वरिती। सरकारी स्टॉक मां दवाऊं ॿीहर ख़रीद करण सबबि क़ौमी खज़ाने खे लखे रुपयनि जो नुक़सान। ज़रियनि जो चवण आहे त बचियल दवाऊं DHQ मटियारी ऐं THQ हाला खे विकिरो करे ॾिनियूं वयूं आहिनि।
3: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
4: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
5: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6। सिंध जो आवाज, ॿुधंदा रहो।

0: परवरिश देखिए हर पीर और मंगल रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।
1: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, GAFM की आवाज,
1: GAFM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, GAFM की आवाज,
1: GAFM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
4: भाई हमने तो ये देखा है कि लड़कियों की जिस जगह शादी होती है उस घर को वो जन्नत बना दी।
5: जाओ जी सब तैयार, ये घर आना है शाहकार।

0: आसपास की चौकी पड़ी होगी और लोग कह रहे होंगे मरहुमा बहुत ही खबीस खातून थी।
1: प्यार परिंदा फड़ फड़ करके फुर से यूं उड़ जाए, जो कहते थे वाह वाह उनको अब कहते हैं।

0: देखिए ड्रामा सीरियल एक भूल रोजाना रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, जीए FM की आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: जो आवाज गीत जो जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज उधर रहो।

0: मिर्जा की हीर देखिए 8 अप्रैल से हर बुध और जुमेरात रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।
1: तहजीब सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का सास, GAFM की आवाज।
1: GAFM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: मोहब्बत यार, मेरी जिंदगी थी वो,
1: मेरी जिंदगी है तू,
2: मेरी जिंदगी है तू। देखिए हर जुमा और हफ्ता रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।
3: तहजीब और सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची पसी है बन के मोहब्बत का साज, GAFM की आवाज,
3: GAFM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
3: तहजीब और सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची पसी है बन के मोहब्बत का साज, GAFM की आवाज,
3: GAFM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल मैं जमीन तू आसमान बहुत जल्द सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का सास, जीए FM की आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बदलता रहो।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल माँ 16 जनवरी से सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, जीए FM की आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती।

0: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, जीए एफएम की आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: आपका और अब्बू का रिश्ता जो नहीं चल रहा, नहीं चल सकता।
1: माँ तलाक याफ्ता हो ना तो लोग बेटियों के किरदार पे भी सॉन्ग नहीं उठाते।

0: कफील। देखिए हर पीर और मंगल रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।
1: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची पसी है बन के मोहब्बत का साज। GAFM की आवाज,
1: GAFM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची पसी है बन के मोहब्बत का साज। GAFM की आवाज,
1: GAFM नेटवर्क, सिंध की आवाज,
3: गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: देखिए ड्रामा सीरियल इश्क तुमसे हुआ पीर से जुमेरात रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: तहजीब और सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, जीए FM की आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज।

0: टैलेंट की मजदूर
1: सी है जी की आवाज
0: वर्क सिंध की आवाज
2: हक सच जो आवाज की आवाज हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: देखिए फितूर जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती।

0: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, जीए एफएम की आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

मेरे बाप ने अपनी पहली बेटी का फर्ज निभाने के लिए इनसे कर्जा ले लिया था, जिसके बदले में मेरा रिश्ता करके इनसे सौदा किया गया।

0: तेरा इश्क है
1: इससे कितनी मोहब्बत करते हो?
2: बे इंतहा।
1: बेगौर के बारे में क्यों सोच रहे थे?
3: ये लड़की जोया कब से तुम्हारे हवासों पे छा गई है?
4: She makes me happy. जब मैं उसके साथ होता हूँ तो मैं अपने आप को एक जिंदा इंसान महसूस करता हूँ।
5: तुम मर्दों के पास बाहर एक यही एक्सक्यूज क्यों होता है?
6: मैं तुम्हारा नहीं, सिर्फ हालात का मुजरिम हूँ।
1: तुम्हारा नाम क्या है?
7: समीर।
2: समीर।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल फासले बहुत जल्द सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: तहजीब और सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज। जीए एफएम।

0: ऐसी जिंदगी तो नहीं चाहती थी। क्या ये सजा है अमान को छोड़ने की?
1: मुझे लगता है कि मुझसे शादी करके तो बहुत बड़ा तीर मार लिया तुमने। मेरी बेबसी और लाचारी की वजह से तुम इस घर की मालकिन बन जाओगी, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है।

0: मुझे अपनी जितनी सफाई देनी थी ना मैं दे चुकी हूँ। अब अपना सर काट के मैं उनके कदमों में नहीं रखती।
1: तुम्हें अपना बोरिया बिस्तर समेट के यहाँ से निकलने की तैयारी करनी चाहिए।
2: जो रिश्ते सुख देने के बजाय दुख देने लगे उनका टूट जाना ही बेहतर है।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाई
3: करे तो

0: डॉक्टर किधर थे? एक डॉक्टर का एक बाल नहीं जला, सिर्फ बच्चे जलने थे।
1: अरे नहीं नहीं बच्चे जल गए, नहीं जले।
2: वफाकी राजधानी इस्लामाबाद जी पीएमज अस्पताल में पाए लगण वाले वाक्य जो जिम्मेवार केर? वफाकी हुकूमत वे डीपी 14 मासूम बारन जे सड़ी फोत थियण वाले वाक्य जा जिम्मेवार जाहिर न किया। थाने की जांच लाए जुड़ियल कमेटी जांच शुरू कर छी। अमले खां लिखत में बयान तलब, सीसीटीवी फुटेज भी तहवील में वी छी। कानून वाले वजीर सेनेटर आजम नजीर तारण चाहिए तो जिंदगी की का भी कीमत ना। थाने की जांच बाद जिम्मेवार खिलाफ कार्रवाई थी। सुबाने ताई शुरुआती रिपोर्ट अची वेंदी। कौमी असेंबली की सेहत बाबत कमेटी पिम्स में एसी में पाए लगण वाले बयान के शकी करार दे छो। पिम्स असेंबली के बयान में भी तसाद की दावा, स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स पारा पिम्स जो दौरो, बाहे वाक्य जा तफसील मालूम कया। कमेटी चेयरमैन डॉक्टर महेश कुमार गुलानी अमले के बयान में तसाद है। आलिया कामरान अमले के बयान में लगी रो है खेन रट्टो हणा वो है। डॉक्टर शाजिया सोबिया अमले जा बयान मुतजाद आन लगे तो ड्यूटी ते मौजूद न हुआ।
3: अपना क्या है सुबह की आवाज को चाहिए थी। चेयरमैन गुलाम हुसैन जरदारी साहब कह चुके हैं कि जो इस मुल्क की आवाज चाहे जिसके लिए वो होगा मेरे आपके किसी और के गहरे से काम है। सिर्फ असेंबली 6 दफा और आखिरी चौथे भी सरकारी तौर पर छुट्टी हुई बड़ी डिफिकल्ट करा था जिसके अगर आपके फंड में जितनी बाल की सिंध के मानव जी पाकिस्तान की कुछ पार्टी के लिए है जो चेक करे पहुंचे से ज्यादा सही सारी ताकत नहीं करने अभी
2: कैंजी ख्वाहिश से कुछ न थो। नवन सूबन बाबत जैके शोक है ठहराव आने सिंध असेंबली 6 पेरा सूबे की विराग के खिलाफ ठहराव पास कियो है। सिंध जहा मानू चाहन खबर है सिंध जो अवाम जो चाहे उन्दो मुझी या अवाज की ख्वाहिश से कुछ नो। वे वजीर माद अली शाह जी इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ कोरंगी के दौरे दौरान मीडिया से गाल बोल माद अली शाह तो मकानी निजाम इदार के बाख्तियार बनाए पीपल्स पार्टी जो मंशूर है। सिंध वाहिद सूबो है जिते मकानी हुकूमतू मौजूद हैं। पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में पेश आयल वाक्यो इंतहाई दिल डारींदड़ है। मुल्क में अस्पताल जो हालतू बेहतर करने की जरूरत है।
4: Chief of Army Staff and Chief of Defence Forces, Field Marshal Sayyid Asim Munir, visited Tehran on 24th August as part of Pakistan's continuing diplomatic efforts to facilitate an end to the U.S.-Iran conflict and renewed efforts.
5: Your dry, cracked skin demands a moisturizer with 3 skin-identical ceramides plus MBE delivery.
4: The Chief of Army Staff and the Chief of Defense Forces visited Iran as envoy of President Trump or the U.S. are misleading and factually incorrect, as his visit was undertaken purely in the context and backdrop of Pakistan's ongoing role as a mediator.
2: Field Marshal jo Irani dauro aman lai jari salasi varin question jo hisso ho. दौरे के अमेरिका से गढ़ण वाली खबरों बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान ईरान जो व्यापार जारी है। एक तरफी पाबंदियों के अमल कटण जा पाबंद नाहीं बड़े तर्जुमन टायरसन इंद्राबी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के सदर ट्रंप के नुमाइंदे तौर तेहरान जो दौरो करण वाली खबरों के रद्द करते है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर घरू वजीर मोहसिन नकवी जो ईरानी दौरो ठिकताण में घटताई वाली पाकिस्तानी कोशिशों जो हिस्सों हो। पाकिस्तान रियासती सतह से अफगानिस्तान से गालियों करण लाय तैयार है। अफगानिस्तान के पेंजी सरजमीन पाकिस्तान खिलाफ इस्तेमाल थियण के रोकण पवंदो। قطری وزیر اعظم ایران جے اہم دورے تے تہران پہنچی ہو شیخ محمد بن عبد آل ثانی جو تہران پہنچن تے وڈی وزیر عباس راکچی آدر بھاگ گیو ملاقات دوران وترپن لاگاپن سمیت خطے کی صورتحال تے گالوں کئی ہوئی ہوں قطری وزیر اعظم ایران نے صدر اسپیکر عسکری قیادت سے ملاقاتوں بھی کندو امریکہ ایران وچ میں جاری چکتان کے خاتمے سمیت خطے کی صورتحال تے گالوں کئی ویندیوں اپنا ہر مسری بحالی بارو معاملوں بھی ہو رہے ٹھیندو سیکیورٹی فورسز جو خیبر پختونخوا بلوچستان میں دہشت گردن خلاف کاروائیوں 11 دہشت گرد مارجی ویا سیکیورٹی ذریعے موجب کے پیچھے علاقے بنو میں لاٹا میں 7 دہشت گردن کے جہن بھیڑو کیا ویو بلوچستان کے علاقے خزار میں آپریشن دوران 4 دہشت گرد مارجی ویا دہشت گردن جو ایک تھاک بھی تباہ بارودی مواد ہتھ وزیر اعظم شہباز شریف پاراں کامیاب آپریشن سے فورسز کے بیٹا پیش شہباز شریف چھ دہشت گردی خلاف جنگ میں قوم فورسز سے گڈ بیٹھل ہے بیرسٹر سید افتخار علی گیلانی کی آزاد کشمیر کے وزیر اعظم طور نامزدگی تے نون لیگ آزاد کشمیر اختلافن جو شکار راجہ فاروق خیریار وٹ

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: तहजीब और सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, GAFM की आवाज।
1: GAFM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: फजाओं में रची बसी है बन के आस।
1: GAFM नेटवर्क सिंध की आवाज,
2: गीत जो आवाज, GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाई।

वफाकी राजधानी इस्लामाबाद के पीएमसी अस्पताल में पाए लगने वाले वाकये जो जिम्मेवार केयर वफाकी हुकूमत बे डी भी चौदह मासूम बारन की सड़ी फोद थियण वाले वाकये जा जिम्मेवार जाहिर न किया। सानिए की जांच लाए जोड़ियल कमेटी जांच शुरू करे छी। अमले का लिखित में बयान तलब, सीसीटीवी फुटेज भी तहवील में वी छी। कानून वाले वजीर सेनेटर आसिम नजीर दार है जिंदगी की का भी कीमत ना सानह की जांच पात जिम्मेवार खिलाफ कार्रवाई थी। सुबह तुरुआती रिपोर्ट अची वी।